राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीते हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणि करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणि जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचित साधनप्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतरदण्डविधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्त।

0: श्रीजोशी स्ववर्तमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणुबल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरम् अन्तरिमयुद्धविरामविषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्कोनगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु महिलानाम् 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती इति वार्ताः।

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Ada panja sudah menikmati jago-jago tadi dengan jaminan saja acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut sesudah berita berita jago instrumen terja komentar jago mereka sport aja dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan saya.
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
8: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
7: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष

0: डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के

0: के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंद्र और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमरीका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल

0: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. The Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: Speaking about the Viksit Vibrant Village program, the Prime Minister said the initiative was designed to inspire young people to visit, understand and engage with the country's border villages. He noted that the program received an overwhelming response with nearly 3 lakh youth participating in the competition, out of whom more than 400 were selected.
2: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स अराउंड द क्लॉक, फॉलो अस ऑन एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts। एंड फॉर डिटेल्स ऑफ दीज स्टोरीज एंड मोर, लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.newsonair.gov.in एंड डाउनलोड द न्यूज ऑन AIR ऐप। The India Meteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. IMD said Odisha will experience widespread to extremely heavy rainfall under the influence of a depression over the northwest Bay of Bengal. Several districts are under red, orange and yellow warnings, with the administration maintaining heightened vigilance as the intense monsoon system continues to impact normal life. Heavy rainfall has triggered waterlogging, inundation and flood-like conditions in the parts of northern and coastal Odisha, prompting close monitoring by the authorities. More from our correspondent.
3: Odisha is in an intense monsoonal episode today as a depression over the northwest Bay of Bengal continues to unleash widespread rainfall across the state. The system is expected to move northwestwards and cross the North Odisha West Bengal coast between Paradip and Sagar Island around this forenoon or noon. The India Meteorological Department IMD has issued a red warning for Sundargarh, Keonzhar and Mayurbhanj districts for today, while orange warnings remain in force for several northern, central and coastal districts. In Bhadrak district, a flood like situation has emerged in 7 gram panchayats of Banta block following a sharp rise in the Kapali river, disrupting road connectivity. The IMD has cautioned about thunderstorms, lightning and gusty surface winds, advising people to remain vigilant and avoid unnecessary movement in vulnerable locations. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: The nation pays tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in

0: Is to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high power task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bagged silver in men's 60kg class. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की माया नाज वेट लिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। यह बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। यह बिल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
2: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायतें शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खुसूसी अदालती निजाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरखा बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया को, सेशन अदालतों को खुसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे जो मजकूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खासतौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निजाम काबिल

0: एतबार शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मजबूत बनाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरख्शां गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है, और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा, और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
0: वजीर आजम ने विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है, ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हो। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
1: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल

0: मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि सीआरपीएफ मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन दो हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताजा मुदाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमरीका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342105050 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर वजीर आजम के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बोहरे असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, حکومت آج لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں ترمیم کا 2026 کا بل پیش کرے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے سبھی ارکان پارلیمنٹ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امتحان کے اصلاحات کے بل پر بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکانی کی سربراہی میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مستحکم کریں۔ انہوں نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں آج بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارت کی مایہ ناز ویٹ لفٹنگ ایتھلیٹ میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلوگرام زمرے میں دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ شوتاؤں آئیے اب سنتے ہیں کارکرم سور گنگا۔ شاستریہ سنگیت کے اس کارکرم میں آج آپ آنند لیں گے ادے کمار ملک دوارا دھمار گائن کا راگ للت پکھاوش پر، ساتھی رہیں گے سبھاشیش گھوش۔

घंटा से रोब ऐसा अत, पाव घंटा एक रोब ऐसा अत। ऋतु, ऋतु यानी फैसल। बहार, बहार। गर्मी यानी गर्मा या तौबिस्तान। जाड़ा यानी सर्मा या जेमेस्तान। शरद, शरद यानी खेजान, पाइज। बरसात का मौसम, बरसात का मौसम यानी फैसले बौरान, फैसले बौरान। बरसात का मौसम। पतझड़ का मौसम, पतझड़ यानी बैर्ग रीजन, पत बैर्ग झड़ रीजन। पतझड़ का मौसम यानी फैसले पाइज। सवेरा, सवेरा यानी सुबह। दोपहर, दोपहर यानी जोहर। शाम, शाम यानी आस्र। रात, रात यानी शब। मध्य रात्रि या आधी रात, मध्य रात्रि या आधी रात यानी नीम शब। छुट्टी, छुट्टी यानी तातील या मुरखसी। जुमले हो ये मुफीद मुख्तसर। हाँ, हाँ यानी बले, जी हाँ, बले एहतरामन, बले सरकार, बले जनाब अली, जी हाँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है हमिन तो रास्त, ऐसा ही है हमिन तो रास्त। यह सच है, सच यानी रास्त, हकीकत। यह सच है, सही हास्त, रास्त अस्त, सही हास्त, रास्त अस्त। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं इन रा मीदानम, दानेस्तन जानना, जानता हूँ मीदानम। मैं ये जानता हूँ, मैं इन रा मीदानम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिस्यार खूब, बिस्यार खूब, बहुत अच्छा। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मानीशन रो खूब मेशन औसम। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मानीशन रो खूब मेशन औसम। धन्यवाद मोलतफे छवि, धन्यवाद। मेर्सी मोतशक्कर, ममनून, धन्यवाद या तशक्कुर, धन्यवाद। मेर्सी। खाना बहुत बढ़िया है, खाना यानी गजा। खाना बहुत बढ़िया है, गजा बेस्योर ऑलिस्त, गजा बेस्योर ऑलिस्त। बहुत बढ़िया कमरा है, कमरा उताक, बहुत बढ़िया कमरा है, उताक बेस्योर खूबस्त, उताक बेस्योर ऑलिस्त। आपका बगीचा सुंदर है, बगीचा यानी बागचे। आपका बगीचा सुंदर है, बागचे शुमा खशंग अस्त। पूरब, पूरब यानी मशरिक या खबर। पश्चिम यानी मगरब, मगरब या बख्तर। उत्तर, उत्तर यानी शमाल, शमाल उत्तर। दक्षिण, दक्षिण यानी जनूब। काला, काला सियाह। सफेद यानी सफीद, हिंदी सफेद, फारसी सफीद। हरा, हरा यानी सब्ज। नीला, नीला यानी आबी। लाल, लाल यानी खरमेज या सुर्ख। पीला, पीला यानी जर्द। केसरिया, केसर जाफरान र मिगुयंद बे इन तरतीब। केसरिया यानी जाफरानी। जी नहीं, जी नहीं न खैर। मैं आपसे बात नहीं करता, बात करना यानी हर्फ ज़दन।

0: إيه من الأفلام الهندية؟
1: क्या कहा?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह, चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने

0: उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
0: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chalambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the

0: घर आंगन।
1: अक्सर घर के आंगन में बैठ जीवन का मंथन करती हूँ, सुनहरी यादों के ताने बाने से खुशियों की चादर बुनती हूँ। ये आंगन मेरे अपनों से पूरा होता है, जिनके होने से मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ।
2: जी हाँ जी प्रतिभा, क्योंकि घर आंगन की शोभा तो अपनों से ही होती है, और भाई जब घर आंगन में अपने मिलते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं का। और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती। प्रतिभा, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और देखिए रश्मि जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो एफएम गोल्ड चैनल पर जुड़ते हैं, जो कि है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
2: जी, और आज का दिन विशेष दिन है। हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज उनकी पुण्यतिथि है, और डॉक्टर कलाम शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और घर आंगन परिवार की तरफ से हम भी उन्हें शत शत नमन
1: करते हैं। बिल्कुल। और रश्मि जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न पूछकर अपने श्रोताओं से, और उस प्रश्न का जो हमारे श्रोता हैं वो एक प्यारा सा जवाब भी देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे उस प्रश्न का।
2: जी, तो आप जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न लाई है आज।
1: जी रश्मि जी, आज का जो हमारा प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए वो है कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है उनमें जो उनको यानी कि आपको बेहतर बनाती है।
2: जी बिल्कुल, और उसका जवाब वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, fmgoldga@gmail.com।

0: तलाश फिल्म में अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और बहुत अभी जो समाचार सुन रहे थे ना प्रतिभा,
0: हाँ जी,
1: तो मतलब इतना अच्छा लगा भाई। राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई 2026 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, और एक बड़ी खुशखबरी हमने अभी सुनी कि इन खेलों में भारत की जो स्टार भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भाई ये सुन के तो मेरा मन जो है ना खुशी से झूम उठा।
0: बिल्कुल, बात ही झूमने वाली है रश्मि जी। देखिए मतलब मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग 3,000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और 74 राष्ट्रमंडल देश जो यहाँ पर भागीदारी दे रहे हैं अपनी। लेकिन जब इतने सारे लोगों में, जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं अपनी पहचान बनाते हैं, तो वो खुशी का माहौल तो होता ही होता है
1: जी।
0: और देखिए, ना केवल मीराबाई चानू बल्कि भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश ले लिया है
1: जी। तो हमारे जो इस समय जो है भारत के 4 पदक आ चुके हैं, और जो महिलाएं हैं भाई जब जाती हैं अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो देश के लिए गौरव बढ़ाने की बात होती है, तो हमें अच्छा लगता ही है।
0: बिल्कुल, और देखिए एक और हैं प्रतिष्ठा सामंता, उन्होंने भी शनिवार को जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में महिला वर्ल्ड स्पर्धा के में जो है क्वालिफाई करके 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बना ली है। तो रश्मि जी, इन सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ये ऐसा ही अपना प्रदर्शन देते रहे इन खेलों में
1: जी, और भारत का नाम रोशन करते रहे
0: जी।

0: तेरे मेरे सपने। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज़ थी आशा भोसले की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है। जी हाँ, ये हमारा आज का प्रश्न है, और जिसका आपको हमें जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर। और
1: तो इसी के साथ हमारे पास जवाब आने शुरू हो गए
0: जी
1: प्रतिभा।
0: जी
1: और उमेश कुमार खयाला से कहते हैं कि मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है तो
0: जी
1: बिल्कुल मैं मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता हूँ। भाई बहुत अच्छी आदत है, अगर आप मदद मांगते हैं, किसी कोई आपसे मदद मांगे और आप मदद दे दें, तो
0: जी
1: इससे अच्छी बात क्या हो सकती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने रश्मि जी। देखिए, मदद करना तो बहुत ही अच्छी बात है, और खुद को सुकून भी देती है ये वाली आदत जब हम मदद करते हैं। और देखिए, एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का। वो कहते हैं कि वो अपने जो रोजमर्रा की जो रूटीन है उसकी उनकी उसमें वो अपनी डाइट संतुलित आहार लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और एक भरपूर और एक अच्छी नींद लेते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
1: और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं बिजी रहता हूं और बिल्कुल साफ सफाई से रहना पसंद करता हूं, तो ये मेरी मेरी ये आदत है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो स्वच्छता जो है ना, वो तो
0: जी
1: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
0: जी
1: का भी आग्रह है, और बिजी रहना भी बहुत अच्छी बात है। हमेशा कर्मशील बने रहे, कर्मठ बने रहे,
0: बिल्कुल
1: तभी हमारा देश जो है विकास की ओर कदम बढ़ा पाएगा। तो
0: बिल्कुल।
1: ये अच्छी आदतें हैं, ये भी बनाए रखें और हम भी आपसे कुछ कुछ सीखते रहेंगे।
0: और ये आदत तो बनाए रखेंगे ही, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और आप हमें अच्छे से अच्छे जवाब अपने भेजते रहेंगे। क्यों रश्मि जी,
1: जी
0: तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं ना। और अब बात करते हैं उस महिला की जिसकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें दी एक खास पहचान,
1: जी
0: पल्लवी पाटिल। जी हाँ, पल्लवी पाटिल ने मुंबई फायर ब्रिगेड की पहली महिला फायर इंजन ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया।
1: जी और भाई देखो कितना मुश्किल काम है महिला फायर इंजन।

0: ड्राइवर हो ना,
1: जी
0: लेकिन क्या था कि पल्लवी के भाई पहले से ही फायर ब्रिगेड में काम करते थे
1: हम्म,
0: और उनके पिता भी चाहते थे कि दोनों भाई बहन इस सेवा का हिस्सा बने।
1: जी
0: और जब महिलाओं की भर्ती शुरू हुई तो पल्लवी भी फायर ब्रिगेड में शामिल हो गई और उसके बाद वो फायर फाइटर के तौर पर थोड़ा उन्होंने काम किया। उसके बाद फायर इंजन चलाने की विशेष ट्रेनिंग ली और विभाग की परीक्षा पास करके मुंबई फायर ब्रिगेड की वो पहली सक्रिय महिला फायर इंजन ड्राइवर बन गई।
1: देखिए वो ड्राइवर तो बनी है ना, लेकिन वो जो है पल्लवी सिर्फ अब फायर इंजन नहीं चलाती बल्कि मौके पर पहुंच कर पानी के प्रेशर को भी नियंत्रित करती है ताकि दमकल कर्मी आसानी से आग को बुझा सकें।
0: हाँ, और भाई प्रतिभा देखो, जब फायर इंजन की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो फिर लगता है ना कि भाई घटना पर जा रहे हैं, आग की घटना है, मन में थोड़ा डर भी होता है, जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, तो ये तो काम तो मुश्किल है थोड़ा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भाई महिलाएं अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जोश और जज्बों में महिलाएं तो देखिए किसी से कम है ही नहीं, और आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में साबित भी तो कर दिया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। क्यों
0: जी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोच उन्हें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है। और अगर आप भी ऐसे सपनों को जी रही हैं तो भाई वक्त है उन्हें भी नया आयाम दें।
1: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी रखवाला।
1: और प्रतिभा, यहाँ हमारे पास सवालों, जो सवाल तुमने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। रवि नारायण जी भिलाई से कह रहे हैं, भाई इस सवाल का जवाब है सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, हम अपनी सकारात्मकता हमेशा बनाए रखें तो हम बेहतर बन सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब। और डॉक्टर ए के टंडन जो हैं वो माया इनक्लेव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह, आप 82 साल के हैं प्रोफेसर साहब। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बाकायदा उसकी डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं प्रोफेसर सर आपको, और आप इसी प्रकार सक्रिय बने रहें और आपके जो छात्र हैं वो आपके अनुभव का, आपकी से जो शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, हमारी यही कामना। आप स्वस्थ जीवन जिए और एफएम गोल्ड से यूं ही जुड़े रहे। और साथ में एक और मेल हम मेरे पास आई है, आप हैं सुरभि मयूर विहार से, वो कहती हैं, दीदी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं मुश्किल हालात में भी घबराती नहीं हूँ, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो मैं शांत रहकर अपना काम करने की कोशिश करती हूँ, शायद यही हिम्मत और आत्मविश्वास मुझे दूसरों से अलग बनाता है।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी देखिए, एक और मेल है राजेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर सच बोलता हूँ। देखिए कितनी अच्छी आदत है ना। और वो कहते हैं कि उनका बिजनेस है और वो जो अपने क्लाइंट्स को जो भी कमिटमेंट देते हैं समय की, उसे वो समय पर डिलीवर करते हैं, उसे समय पर पूरा भी करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इसी आदत की वजह से उन्हें समाज में एक बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि सच बोलें, सच के साथ रहें। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि किसी को कोई गुमराह होने वाली सलाह मत दो, अगर उनकी मदद करने की पॉसिबिलिटी हो तो जरूर करें और कोशिश करें। बिल्कुल सही आपने कहा यादव जी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, कुछ और जानकारियों के साथ।
0: बिल्कुल, देखिए रश्मि जी, जब हम अपने देश को, हम चौतरफा जब अपनी नजर दौड़ाते हैं हर राज्य, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाएं, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है ना। और ऐसी ही आज हम बात करेंगे कला, ऐसी ही एक कला की जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र की आत्मा कहलाती है, जो कि है सांझी कला।
1: ये कला भारत के ब्रज क्षेत्र, मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन की एक पारंपरिक और अत्यंत प्राचीन कला है प्रतिभा। और इसमें रंग बिरंगे कागजों पर अत्यंत बारीक और जटिल जो डिजाइन है वो उकेरे जाते हैं, स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं।
0: और देखिए स्टेंसिल तो बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है ना, वो दीवारों और पानी पर मनमोहक रंगोली बनाने या आकृतियां उकेरने के लिए किया जाता है। और उस सांझी कला के बारे में अगर हम और बातें करें तो सबसे खास बात यह है कि ये जो सांझी शब्द है वो हिंदी के संध्या यानी शाम से निकला हुआ है ना। और ये कला जो है शाम के समय में बनाई जाती है, और कहा जाता है कि जो ये वाला समय होता है ना शाम वाला, वो भगवान कृष्ण के ब्रज लौटने का समय होता है, और इसे राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी रासलीला का प्रतीक माना जाता
1: भाई
0: है।
1: शाम भी है और श्याम भी है। और पुराणों में उल्लेख है कि संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण करके आते थे तो ब्रज गोपियां उनके स्वागत में फूलों की चित्रकला सजाकर उनका स्वागत करती थी, तभी से ब्रज में ये सांझी कला की शुरुआत हुई।
0: देखिए जैसा कि आपने शुरू में बताया कि स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं कैंची से ही काट कर, और सबसे जो खास बात यह है कि जो इसके डिजाइन होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें मोर, फूल और कृष्ण लीला के जो डिजाइन है वो काटे जाते हैं, और फिर इन स्टेंसिल्स को जमीन पर या पानी की सतह पर रखकर उसमें रंग या सूखे फूल डाले जाते हैं।
1: जी, और जब कागज हटाते हैं ना प्रतिभा, तो एक शानदार चित्र उभर जाता है। और ये मंदिरों में जो सांझी बहुत श्रद्धा के साथ बनाई जाती है, भाई हमें भी ऐसी ही एहसास हो रहा है, ये जो विषय है आज का, मन में श्रद्धा पैदा हो रही है। और ये कला अध्यात्म

0: और रश्मि जी, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम अपना प्रश्न श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है, बेहतरीन बनाती है। और आपको हमें मेल करना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: जी, एक मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं कुमुद वैशाली से। वो कह रही हैं कि मैं जल्दी हार नहीं मानती, मुश्किल चाहे कितनी भी हो, मैं जब तक रास्ता ना मिल जाए मैं कोशिश करती रहती हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए, हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोता ही हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का
0: जी
1: तरीका,
0: जी बिल्कुल।
1: है
0: और
1: ना
0: देखिए, हम एक दूसरे से सीखते ही तो हैं,
1: जी।
0: है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा बनकर ही आगे आते
1: एक
0: हैं।
1: और मेल हमारे पास आई है, लता जी हैं, वो कह रही हैं सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप और भी जानकारियां कहीं लेकर आई हैं प्रतिभा?
0: बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, सरकार ने जो है ना जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं, और
1: जी
0: जिनका लाभ अनेकों अनेक लाभार्थी उठा भी रहे हैं। और सरकार ने हमारे पशु पालकों का भी ध्यान रखा है ना। और उनके ध्यान को रखते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका लाभ छोटे पशुपालक, महिलाएं सभी को ही उठा रहे हैं। और उनमें एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना।
1: क्या बात है। आपने पहले सांझी कला में कृष्ण की बात की और उसके बाद आप गोकुल मिशन में आ गई। आज थोड़ा सा वृंदावनी हो रहा है मन,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना। और भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वह भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो देसी गाय है ना, उनका, भैंसों का, नसों का, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और दुग्ध उत्पादकता को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है।
0: बिल्कुल। और इसी के तहत जो है ना, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और IVF जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से देसी मवेशियों की नस्लों में सुधार करना है।
1: जी,
0: साथ ही साथ स्वदेशी नस्लों की दूध देने की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।
1: तो भाई, जो महिलाएं स्वरोजगार अगर की तरफ मुड़ना चाहती हैं, अगर ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, तो भाई उनको जो है पूंजीगत लागत पर 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। और मवेशियों के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष गोकुल ग्राम एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, ये जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान उच्च नस्ल के मवेशियों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
1: तो अगर इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती हैं कोई महिला या जो भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो जो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र है राज्य के, उसके पशु पालन विभाग या कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं।

0: हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नदिया के पार। और रश्मि जी, एक मैसेज और आया है इदरीस सैफी जी का, वो भी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं और मेल करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो आदत है वो ये है कि कोशिश करते रहना।
1: हाँ, और शीतल शाह बेंगलोर से जुड़ गई है हमारे साथ, वो कह रही है, जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्ते पर मैं गिरी, संभली, चोट खाई, दिल टूटा पर हार नहीं मानी। और आध्यात्म का ज्ञान और गीत संगीत का साथ उनका रहा, तो जीवन में उनको वो संभल गई। मैं बता दूं आपको, शीतल जो हैं बहुत अच्छी कहानीकार हैं और इनकी कहानियां समय समय पर विभिन्न FM चैनल से प्रसारित होती रहती हैं। विविध भारती में भी इनकी कहानी प्रसारित हो चुकी है और मैं पानी पर लिखी कहानी में भी इनकी कहानियाँ ले चुकी हूँ और शीतल जुड़ी हुई हैं। अच्छा लग रहा है, इसी तरह से जुड़े रहिए शीतल जी और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखकर श्रोताओं का मनोरंजन करती रहिए। और के साथ एक दो श्रोता मेरे साथ और जुड़ गए हैं। आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, वे कह रहे हैं, मेरे अंदर सबसे अच्छी खूबी शायद ये है कि मैं रिश्तों और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। अपने परिवार और अपने लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कोशिश करता हूँ मुश्किल समय में मेरे अपने लोगों को ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है।
0: देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है और उसमें जो संतुलन है ना वो इन्हीं सब आदतों के चलते ही आता है।
1: और एक और मेरे पास थोड़ा सा मजाक क्या सा जवाब आ चुका है, आप है सोनीपत से वीरवान जी, वो कह रही है मेरी खूबी बताऊं भाई, मैं बहुत धैर्यवान हूं और खासकर तब जब मेरी पत्नी कहती है बस 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूं। वैसे सच कहूं तो मैं बहुत खुश मिजाज हूं, लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता हूं और मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। पर ये हंसमुख होने की आदत आपकी बहुत अच्छी लगी वीरवान जी, बनाए रखिए इसे।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी, तो आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम में और आज हम देखिए बात करेंगे कि ऐसी आर्मी की जो सरहदों की रक्षा नहीं करती, वो रक्षा करती है एक पक्षी की।
1: वाह
0: जी हाँ, हरगिला एक पर्यावरण प्रहरी है जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया है।
1: जी, हरगिला जो है वो असम में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी है जो पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जमाने में इसको माना जाता था कि भाई देखना अच्छा नहीं मानते थे, तो ये होता था गांव वाले जिस पेड़ पर पक्षी का घोंसला होता था ना प्रतिभा, वहां के लोग उस पेड़ को ही काट देते थे। लेकिन देखिए कैसी विडंबना थी, क्योंकि जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सफाई में योगदान दे रहा है लोग थोड़ा सा डर जाते थे उसे।
0: हाँ। और देखिए जो अंधविश्वास और डर होता है ना वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को जन्म देता है और वही नुकसान भी होता है। और देखिए ऐसे में डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन जो कि एक जीव विज्ञानी है उम्मीद की किरण बनकर आई, जब उन्होंने हरगिला को इस तरह मरते देखा तो उन्होंने लोगों के मन में बसे अंधविश्वास और डर को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई और साथ ही साथ गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और विज्ञान के जरिए उन्हें समझाया कि जो ये हरगिला है वो अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो बल्कि पर्यावरण प्रहरी है। और धीरे धीरे देखिए बदलाव आया
1: और सही तरीके से जो उन्होंने जानकारी दी उन्होंने इस जो परंपरा जो थी उसको तोड़ दिया और बदला और हरगिला का संरक्षण किया।

0: बंदिनी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी आशा भोसले की।
1: और प्रतिभा, तुम खूबियों के बारे में पूछ रही थी, तो शीशपाल अकेला जी गाजियाबाद से कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कसम कभी खाता हूँ। भाई अच्छी बात है, हमने भी यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक और बड़ा मजेदार सा मेल मुझे मिला है पालम से, हिमांशु जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं हर परिस्थिति में खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ।
0: अच्छा
1: जी, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मैं पहले चाय पीता हूँ और फिर सोचता हूँ कि समाधान क्या निकलेगा। और दोस्तों के बीच मेरी यही खासियत है कि मैं माहौल को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ। मेरा मानना ये है कि जिंदगी में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराने की आदत बनी रहे तो आधी समस्याएं वैसे ही छोटी लगने लगती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि बड़े हल्के तरीके से, मतलब बड़े माहौल को हल्का करके वो समस्याओं का हल निकाल लेते हैं और परिस्थिति को जो है उसको ओवरकम कर लेते
1: जी
0: हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और विवेक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी खूबी यह है कि मैं गलती होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोता। आखिर गलती मेरी हो तो उसे भी समझाने के लिए मेरे पास कम से कम 10 अच्छे बहाने जरूर होते हैं। मतलब बहानेबाज हैं भाई विवेक जी,
0: बिल्कुल
1: लेकिन मजाक से अलग, मजाक से अलग। और वो कहती है मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ कि गलतियों को दोहराऊं ना।
0: और देखिए रश्मि जी, जो समय है वो निष्पक्ष है ना। देखिए अब समय
1: जी
0: निरंतर चलता है और उसने हमें इशारा कर दिया है कि हमारे चलने का हो गया है वक्त, है ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और तो इसी वादे के साथ श्रोताओं से फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर इसी समय पर। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि

0: प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698 जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसने कुल 8 करोड़ की कमाई की, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम के बाद उस दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। श्रोताओं, संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में जैसे लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड सहित कई स्थानों पर हुई थी। ये उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्मों के लिए सबसे लंबी अवधि की फिल्म थी, जिसके कारण इसे सिनेमाघरों में

श्रोताओं, संगम फिल्म की संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और गाने के बोल शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। ये 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम रही। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में राज कपूर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में वैजंती माला को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। आपको बता दें, ये राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी और फिल्म इनकी शानदार और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।

श्रोताओं, बात फिल्म संगम की कहानी की करें तो ये तीन दोस्तों की कहानी है, सुंदर, गोपाल और राधा। बड़े होने पर सुंदर राधा से प्रेम करने लगता है, पर राधा गोपाल को पसंद करती है। जब सुंदर अपने दोस्त गोपाल को अपने प्यार के बारे में बताता है तो गोपाल राधा के प्रति अपनी भावना को मन ही मन दबा देता है। कुछ दिनों बाद सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और जाने से पहले गोपाल से वादा लेता है कि कोई उसके और राधा के बीच ना आ सके। कुछ दिनों बाद सुंदर के विमान नष्ट होने की खबर आती है

जिससे सभी मान लेते हैं कि सुंदर की मौत हो चुकी है। इसके बाद गोपाल राधा को अपनी दिल की बात बताने के लिए एक लव लेटर लिखता है, जिसे राधा अपने पास छुपा लेती है। दोनों शादी करने के लिए सोचते ही हैं, तब तक सुंदर पूरी तरह सुरक्षित और अच्छे हालत में वापस आ जाता है। सुंदर और राधा की फिर शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन एक अननोन लव लेटर सुंदर के हाथ लग जाता है, जिससे वो राधा पर शक करने लगता है। सुंदर व्याकुल हो जाता है, जिसे देखकर गोपाल को कोई और रास्ता नहीं सूझता और वो सुंदर को से बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है। और अंत में राधा और सुंदर वापस एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगम प्रेम, वफादारी, बलिदान और रिश्तों में लिए गए फैसलों के परिणामों जैसे विश्वों को दर्शाती है। ये किरदारों द्वारा अपनी जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए सामना किए जाने वाले संघर्षों और भावनात्मक उथल पुथल को चित्रित करती है। अपनी कहानी और किरदारों के कारण फिल्म को साहसिक और अपने समय से बहुत आगे माना गया है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना की रोकथाम बारे सोध बिल 2026 अज लोकसभा विच पेश कर दिता गया है। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां के विरोध विच विरोधी धिर के हंगामे कारण 2 तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस वलों ताकत की ज्यादा वरतों संबंधी कई पटीशनों ते कल सुनवाई लई सहमत हो गई है। राष्ट्र अज साबक राष्ट्रपति ते उघे विज्ञानी डॉ APJ अब्दुल कलाम नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 अज नवी दिल्ली विच शुरू हो गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। लोकसभा च जनतक प्रीख्यावां अनुचित साधना की रोकथाम सोध बिल 2026 पेश कर दिता गया है। पहली बार मुलतवी होने तो बाद सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू होने ते अमले जनतक शिकायतों ते पेंशन राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सदन विच बिल पेश किया। इस बिल च जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना की रोकथाम बारे 2024 के कानून विच सोधां की व्यवस्था है। बिल पेश किए जाने दौरान विरोधी धिर के मैंबरां ने नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई ते चर्चा की मांग करदिआं हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल प्रीख्या वल सुधार विच इक महत्वपूर्ण कदम अते इस ते व्यापक चर्चा होनी चाहीदी है। उन्होंने मैंबरां नूं सहयोग अते अर्थपूर्ण चर्चा की अपील करदिआं मर्यादा बनाई रखने की अपील की।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: पर हंगामा जारी रहा ते सभा दोपहर बाद 2 तक मुलतवी कर दी गई। इस तो पहला अज सवेरे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, चिनम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथू पांडिये ते पैरा पावर लिफ्टर जंडू कुमार नूं 23वीं राष्ट्रमंडल खेडां विच तमगा जितण ते वधाई दित्ती। प्रश्नकाल शुरू हुंदे ही विरोधी धिर दे मैंबरां ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां का मुद्दा उठाया। राज्यसभा विच भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने तो बाद जदों 12 कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तो विरोधी धिर ने फिर हंगामा किया। इस तो बाद सभापति CP राधा कृष्ण ने सदन नूं दोपहर बाद 2 तक मुलतवी कर दिता। इस तो पहला राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 तहत विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस कार्रवाई से चर्चा की मांग की। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने सारे संसद मैंबरों को प्रीख्या सोध बिल से चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि वो सारे संसद मैंबरों को आज की चर्चा में हिस्सा लेने, नौजवान पीढ़ी की आवाज सुन और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों लिए गए इतिहासक फैसलों को ध्यान में रखने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीख्या सुधारों ते एक उच्च पद्धरी टास्क फोर्स का गठन का ऐलान किया जिसकी अगवाई प्रसिद्ध तकनोलॉजी माहिर नंदन निलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स प्रीख्या सुधारों ते ध्यान केंद्रित करेगी ते इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाली प्रीख्यावां की भरोसेयोगता यकीनी बनाने लई जल्दी तो जल्दी कदम चुके जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की प्रीख्या प्रणाली भरोसेयोग पारदर्शी तकनोलॉजी की वध तो वध वरतों होनी चाहिए है। टास्क फोर्स विच साबक इंटैलीजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन डेका, इसरो के साबक चेयरमैन S सोमनाथ ते IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी काम कोटी भी शामिल होंगे। साबक सिक्ख्या सकत्र अनीता करवाल ते प्रबंधन माहिर अमृत लाल मीणा भी टास्क फोर्स विच शामिल होंगे। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਸਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CRPF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, CRPF ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

0: adjourned till 3 p.m. and Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former president and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defence and space research development. More from our correspondent.
1: Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे

0: इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
5: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा

0: खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसने बिना किसी फिल्मी परिवार से जुड़े हुए अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इस इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी खास अभिनेत्री कृति सेनन की। जी हाँ, आने वाले लगभग दौर में कृति ने अपना नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर ला दिया है। तो सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। साथियों, उनके पिता राहुल सेनन चार्टेड अकाउंटेंट हैं और उनकी माता गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। साथियों, कृति ने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई।

दोस्तों, कृति सैनन ने फिल्म की थी बरेली की बर्फी। जी हाँ, इस फिल्म में कृति ने बिट्टी मिश्रा का किरदार निभाया था और हीरो थे इनके साथ आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव। और इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत खूब पसंद की गई थी इस फिल्म में। यह फिल्म उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी।

दोस्तों, कहा जाता है कि एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान निर्देशक की नज़र कृति पर पड़ी। उनके स्क्रीन टेस्ट ने निर्माता और निर्देशकों को इतना प्रभावित किया और उन्हें फिल्म मिल गई हीरोपंती, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उनके साथ थे टाइगर श्रॉफ। ये फिल्म इन दोनों ने जो शुरुआत की थी बॉलीवुड में, शानदार शुरुआत।

साथियों, शुरुआत में कृति कैमरे के सामने काफ़ी नर्वस हो जाती थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में भी बताया कि अभिनय सीखने के लिए उन्होंने लगातार वर्कशॉप्स और स्क्रीन टेस्ट किए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। कृति अपनी सेहत को लेके बहुत ही सीरियस रहती हैं और वो फिटनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देती हैं। शूटिंग कितनी भी व्यस्त हो, लेकिन वह नियमित वर्कआउट और संतुलित भोजन का ध्यान रखती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि उनकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखती है, जो उनका बॉडी शेप है, हमेशा आकर्षक बना रहता है। कृति को बहुत कम लोग जानते हैं साथियों, कि उन्हें कविताएं और छोटे छोटे विचार लिखने का भी बहुत शौक है। जब भी उन्हें खाली समय मिलता है, वह पढ़ना और लिखना पसंद करती हैं। साथ ही साथ उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन भी मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हैं। दोनों बहनें अक्सर सोशल मीडिया पर साथ दिखाई देती हैं और एक दूसरे की सबसे बड़ी समर्थन मानी जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार और तकनीशियन बताते हैं कि कृति अपने शांत और विनम्र व्यवहार के लिए बहुत मशहूर हैं। सेट पर समय की पाबंदी और सभी के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार उनकी पहचान माना जाता है।

साथियों, अब समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रखना है और स्वस्थ मस्त रहना है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज का। जी हाँ साथियों, आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अगले आधे घंटे तक हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब संगीत केवल सुना नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था, जब मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें हर दिल की धड़कन बन जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं यादों का यह खूबसूरत सफ़र इस गीत के साथ।

दोस्तों, फिल्म गाइड का गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, फिल्म गाइड को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गिना जाता है। वहीदा रहमान पर फिल्माया यह गीत आज भी आज़ादी और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, सुनते हैं अपना अगला गीत जो मुझे बेहद ही पसंद है और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो लीजिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और हम सभी जानते हैं कि शादी ब्याह और खुशियों के मौके पर आज भी यह गीत उतना ही लोकप्रिय है जितना कि ये अपने समय में था। अब सुनते हैं अपना अगला गीत फिल्म आराधना से, और आवाज़ है किशोर कुमार की।

दोस्तों, राजेश खन्ना की सुपरस्टार छवि बनाने में इस गीत की बड़ी भूमिका रही। दार्जिलिंग की वादियों पर फिल्माया गया यह दृश्य आज भी यादगार है हम सबके दिलों में।

0: दोस्तों, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया यह गीत प्रेम, दर्द और जीवन की सच्चाइयों को बेहद खूबसूरती से बयान करता है। और साथियों, जो गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसमें गुलजार के शब्द और आर डी बर्मन का संगीत इस गीत को और भी बेहतर बना देता है। यह गीत रिश्तों की गहराई और गहराई को बहुत संवेदनशीलता से प्रस्तुत करता है। तो लीजिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं।
1: साथियों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, यह गीत प्रेम गीतों की सूची में हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। मुकेश की आवाज और साहिर लुधियानवी के शब्द इस गीत को और भी अमर बना देते हैं।

दोस्तों, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज के मैटिनी मेलोडीज में हमने 60 और 70 के दशक के उन गीतों का आनंद लिया जिन्होंने संगीत को नई पहचान दी और आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं। इसी तरह हम फिर मिलेंगे नई यादों और नए सदाबहार नगमों के साथ। तब तक मुझे यानी अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जाते जाते याद रखिए कि स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: दिल्ली, पुरानी दिल्ली की गलियों में बहुत घूमते थे, नई दिल्ली से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वहाँ कबाब खाना और ये सब चीज़ें रहती हैं उनके। तो एक दिन उससे कहा कि भाई यहाँ आपका उर्दू का सबसे बड़ा शायर कौन है? तो मैंने कहा जोश। तो उनका मिलाइए, तो हमने जोश को दावत दी, उनके यहाँ आए तो नरुदा उनसे बहुत ही मशरक़ी अखलाक के साथ मिले। हस्पानियों में, स्पेन वालों में मशरक़ी अखलाक मौजूद है, गले मिले और बैठे। फिर जोर साहब से पूछा कि कहिए आपकी शायरी का क्या हाल है ये, और फिर कह लेंगे हमें अपनी कोई नई नज़म सुनाइए। तो जोश ने मुझसे हंस के कहा कि गोया ये मेरी पुरानी नज़मों से वाकिफ है। फिर जोश ने अपनी नज़म सुनाई, नरुदा ने अपनी नज़म सुनाई, क्योंकि नरुदा का यह ख्याल था कि शायरी तर्जुमे के बग़ैर भी आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसका एक आहंग होता है। चूँचि बम्बई में रोज़ शाम को हम लोग बैठते थे, मजरू भी आ जाते थे, कैफी भी आ जाते थे रमेश थापर के घर पर, तो पब्लो नरुदा अपनी नज़में सुनाते थे, हम लोग अपनी नज़में सुनाते थे
1: जी। तो तस्वीर वाली बात,
0: हाँ, तो वो बुलंद आहंगी उस वजह से इन सब के यहाँ आपको मिलेगी, नरुदा के यहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। और मैंने चूँकि गज़लें नहीं कहीं, इसलिए मेरा एक आहंग बन गया। अब मैं जो नज़म भी कहता हूँ, वो गज़ल भी जो कहता हूँ, तो उस गज़ल में फिक्री अनासिर ज़्यादा है
1: जी। एक बात और, कैपिटल आई, मैं जेल खाने में इश्क पेचा की नर्म बेलों को ढूंढता हूँ, जो फैल जाती हैं अपने फूलों के नन्हे नन्हे चिराग लेकर, कहाँ है वो दिलनवाज बाहें हैं अवध की खाके ऐसी। ये मैं जो आपके यहाँ बार बार आता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
0: इसलिए कि मैं फैज के मुकाबले में ज्यादा मुनकसर मिजाज हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं फैज़ के लिए कह सकता हूँ ना, मेरे दोस्त, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। फैज़ ने बार बार ये कहा कि मैं तो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हम इस्तेमाल करता हूँ। तो हम तो बादशाह इस्तेमाल करते थे, आम आदमी तो हम इस्तेमाल नहीं करता था, और पंजाब का आदमी तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो ये मैं जो है ये, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि किसी जगह पर ये मैं मेरी ज़ात के लिए होता हूँ, किसी जगह के ऊपर एक बहुत ही आम। तो ये मैं और हम, हम माना है दोनों, दोनों हम माना है।
1: मैंने इसलिए पूछा,
0: और पूरब की जबान में तो हम का लफ्ज चलता है
1: जी, इसलिए पूछा कि बुलंद आहंगी की जो एक लिसानी नफसियात, उससे शेरी किरदार का बड़ा रिश्ता होता है। मुमकिन है वो आहंग जो है आपका, वो इसका मुतामिल हो कि आप मैं कहें?
0: नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ।
1: जाफरी साहब, इधर एक ख्वाब और जो मजमूआ आपका आया था, उसके बाद भी शायरी आपकी बहुत आगे बढ़ी, मेरा ख्याल है उसमें महसूस ऐसा किया गया कि आपने अपने लहजे को या अंदाज़ फ़िक्र को बहुत तब्दील किया है, और आज की जो जनरेशन है उससे बहुत करीब आ पाए। जो नज़में आपके यहाँ बहुत तवील होती थी पहले, वो मुख्तसर हुई,
0: तीन तीन मिसरों की भी नज़में
1: जी हाँ, लेकोनिक और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ज़्यादा आपके यहाँ आया। तो ये तब्दीली क्या ज़माने के साथ चलने के लिए थी, या ये कि खुद अंदर से आपकी?
0: ये बहुत शऊरी नहीं होती
1: जी।
0: और आप एक चीज़ और देखेंगे कि मेरे यहाँ, मेरा अपना ख्याल है कि 5-6 मुख्तलिफ आहंग मिलेंगे मेरी शायरी में, और मेरा ख्याल है कि हमारे शुरा में, मेरे हमसर शुरा में जितनी ज़्यादा बहरें मैंने इस्तेमाल की हैं, किसी दूसरे शायर ने नहीं की हैं। सब दो दो तीन तीन बहरों में महदूद रहे हैं, मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। ये तब्दीली जो आई है इसके बाद, इसके अंदर आपको दो तीन तरह की नज़में मिलेंगी। ये इसके पीछे मेरा सोवियत यूनियन का तजुर्बा है, और इसका जो पहला दिए वो है दीबाचा, मुख्तसर तरीन
1: जी हाँ,
0: के ख्वाब और शिकस्त ख्वाब इस दौर का मुकद्दर है, लेकिन नए ख्वाब देखना इंसान का ऐसा हक है जिससे दुनिया की कोई ताकत उसको महरूम नहीं कर सकती
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने इकबाल का कत्ल लिखा है कि हजारा साल बाफितरत नशिस्तम बहू पैवस्तम व असखुद गुसस्तम व लेकिन दास्ताना मिन दो हरफा तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, कि हमारी दास्तान तो यह है कि हमने तराशा बुत, परस्तिश की और तोड़ के फेंक दिया। तो इसके अंदर एक ख्वाब और में यही अमल है और ये तीन सिंबल्स के साथ चलता है, ख्वाब, शिकस्त ख्वाब, नया ख्वाब, हिजर, विसाल, हिजर, या विसाल, हिजर, फिर विसाल, तिशनगी, आसूदगी, फिर तिशनगी, ये पैटर्न बराबर चलते रहते हैं और तकरीबन हर नज़्म में ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। कत्ले आफ्ताब में गुरूब आफ्ताब के सिंबल से तुलुए आफ्ताब के सिंबल तक जाता है, या जो मेरी मेरी नज़रों में सबसे अच्छी नज़्म है, मेरा सफ़र, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, उसमें मौत और ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें भी यही पैटर्न चल रहा है ये सारा। तो मैंने ये नज़में कही हैं सन 1954 और सन 1964 के दरमियान। 54 में मैं सोवियत यूनियन गया
1: जी।
0: और वहाँ पाब्लो नरुदा, नाजिम हिकमत, लुई अरागा, अपने क्या नाम है, शलोखॉफ, एहरनबर्ग, इन लोगों से सबसे मुलाकात हुई। और ये जो अमल इस वक्त आपके सामने आ रहा है, इसकी इब्तदाई यानी लहरें उस वक्त महसूस की जा रही थी। तो दो चीज़ें उस वक्त बड़ी वाजे तौर से सामने आई मेरे, और यानी हमने बातें बातें भी की, और वो ये थी कि सोशलिस्ट रियलिज्म का तस्वुर वहाँ पर बहुत से लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। चुनांचे उनमें लुई अरागा भी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा मेंबर भी,
1: फ्रांस के
0: मेंबर था, और उसमें सोवियत यूनियन में भी लोग मौजूद थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि सोवियत सोसाइटी में जो मनफी किरदार है उनकी तस्वीर कशी नहीं की जाती थी, उसको एहरनबर्ग ने अपनी एक किताब में किया और उसकी वजह से वो मातूब करार दिया गया एहरनबर्ग। फिर हमें वहाँ बहुत सारे और मसाइल का इल्म हुआ, शायरों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई ये वो सब हुआ, तो उसकी वजह से और फिर खुरुश्चेव की 20th कांग्रेस की रिपोर्ट आई। इत्तेफाक से उस वक्त भी मैं मॉस्को में था, और इत्तेफाक से उस वक्त भी मॉस्को में था जब स्टालिन की लाश हवा से हटाई गई है। तो अच्छा, ये सब दिलचस्प है। शाम को देखा तो बसोलियम पर स्टालिन और लेनिन दोनों लिखा था, सुबह उधर गए रेड स्क्वायर पर तो सिर्फ लेनिन लिखा था, तो अंदर देखा तो गायब, बाकी तो कुछ मालूम नहीं हुआ। तो ये जो है इसके रिफ्लेक्शंस इसमें मौजूद हैं, और इनको इन तसव्वुरात को मैं बुलंद आहंग जबान में, जो मैं उसमें रिटोरिक्स में कहता था, जो मसलन एशिया जाग उठा की जबान है, कि जबान खोली तो वेद, इंजील और कुरान बन के बोले, ये रिटोरिक जो है ना, खिताबत, जो खिताबत को तो मैं शेरी जुज समझता हूँ, जमालियात का, शेरी जमालियात का एक जुज है खिताबत, तो इसमें ये अशार मुमकिन नहीं थे। और ये नहीं कि मैं कोई शऊरी तौर से कह रहा था, तो जो मेरी पहली ही नज़्म है ख्वाब और शिकस्त ख्वाब
1: जी,
0: आप उसके इस्तियारे देखेंगे या शेरी पैकर, तो उनके अंदर सारी बुलंद आहंगी मौजूद है, लेकिन जो पैटर्न है पाबंद नज्म का वो उसको ज़रा सा संभाल लेता है, क्योंकि वो शुरू यहीं से होती है कि ख्वाब अब हुस्न तसव्वुर के उफुक से हैं परे, दिल के एक जज्बे मासूम ने देखे थे जो ख्वाब, और ताबीरों के तपते हुए सहराओं में तिशनगी आबला पा शोला बकफ मौज सराब। अब ये मुश्किल इमेजेस हैं, बहुत ही मुश्किल इमेजेस हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते बात वहां तक पहुंच जाती है कि अब तो दामन को पकड़ते हैं लहू के गिरदाव, देखती रहती है एक एक का मुंह खामोशी, देखती फिरती है एक एक का मुंह खामोशी, जाने क्या बात है, शर्मिंदा है अंदाज खिताब, दरबदर ठोकरें खाते हुए फिरते हैं सवाल, और मुजरिम की तरह उनसे गुरेजा है जवाब, सरकशी फिर मैं तुझे आज सदा देता हूँ, मैं तेरा शायर आवारा हूँ बेबाको खराब, एक फिर जज्बे बेताब की आलम पे कमन, एक ख्वाब और भी आए हिम्मत दुश्वार पसंद,
1: क्या कहने।
0: तो वो जो मेरी रिजाइयत है वो बाकी है, इन सब में बाकी है।
1: इसमें बातें यहाँ खत्म हम कर रहे हैं, मजबूरी है वक्त की, वरना यहाँ से शुरू होती थी बातचीत। तो और इत्तेफाक से कि ख्वाहिश ये थी कि तबर्रुकन कुछ शेर भी आपके इस इंटरव्यू में आ जाएं, तो इत्तेफाक से नज़्म के कुछ मिसरे आ गए हैं। बहरहाल आपकी आमद का और इस मुलाकात का बेहद शुक्रिया।
2: समईन, अभी आप अली सरदार जाफरी से ये दिलचस्प गुफ्तगु समाप्त कर रहे थे। उनसे महवे गुफ्तगु थे महमूद हाशमी। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था काजल सूरी ने और मुआविन थे इंतज़ार सैफी। तो सामईन, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपने

听众朋友们，请收听瓦尼杰兰唱的一首《山歌》，请你们享受。

0: 他们又把福音王扔进火里，在火里他又喷出来好多水，以此变成了冰袋。吉离国王再也忍不住了，福音王被送进了森林里。他在森林里待了几天，福音王的忽然消失造成了吉利王国的干旱。很久了没有下雨，土地出现了大片的荒凉，看不到一粒谷子，村民们没有饭吃而饿死，到处不见一棵草，河水干枯，村民们都很着急。吉利国王更着急，饥荒不可避免，福音王上哪儿去了？吉利国王召集了他的大臣，几位智慧的人也被邀请了来。国王问大家，谁能把福音王带回来？没有人敢接受这一任务。最后一位圣人出来并接受了任务。圣人对着大树问福音王在哪儿，他得知福音王藏在了一棵大榕树里。圣人走进那棵树叫道，哦，福音国王，您是醒着还是睡着？从里面回答说，我现在既没有睡觉也没有醒着。圣人说，那您怎么不出来？福音王说，我并不愿出来。圣人说，你是否生气了？回答说，可能。圣人又说，那你要什么呢？福音王说，我要与吉利国王的女儿结婚。圣人笑了，回答福音王说，你能与吉利王的女儿结婚？很快福音王出来了，乌云也吼叫了起来。福音王笑了一千次，其结果倾盆大雨降了下来，所有的井和湖都填满了水，干枯的土地变成了泥土，河水开始流了，每个人都特别高兴。吉利国王握着福音王的手，叫他忘记吉利王所做的一切。福音王与吉利王的女儿结了婚。吉利王对福音王说，我只是挂着头衔的国王，而你才是真正的国王。印度德里广播电台刚才播送的是篇中央邦的民间故事，题目是《浮云国王》。
1: 印度德里广播电台，现在我们报告新闻要点。莫迪总理宣布成立由科技专家南坦尼里凯尼领导的高级毕业工作组。政府在人民院下议院提出2026年公共考试方式作品修正案。国防部长拉杰纳的兄哥朱和伊莎辛格和马努巴克尔在国际射击运动联合会世界杯上获得奖杯。全国缅怀前总统阿卜杜拉·卡拉姆博士逝世周年纪念日。美伊暂停军事打击后，全球原油价格暴跌约6%。第22届英联邦乒乓球锦标赛在新德里开幕。 印度德语广播电台听众朋友们新闻要点报告完了。听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。
2: खेल खिलाड़ी
3: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
4: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
5: विदुषी वत्स। नमस्कार।
4: तो विदुषी, सबसे पहले आज कार्यक्रम में जो खास है उससे हम बात करेंगे। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है और भारत का प्रदर्शन अब तक का काफी खास रहा है। तो चौथे दिन की रिपोर्ट तो आज हम कार्यक्रम के दौरान सुनवाएंगे ही, साथ ही साथ पांचवें दिन का जो शेड्यूल है और कितने मुकाबले खेले जा चुके हैं उन सब के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा क्रिकेट की बात होगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया, यानी कि 3-0 से सीरीज अपने नाम की। साथ ही साथ ISSF राइफल पिस्टल शॉटगन वर्ल्ड कप हांगझाउ चाइना में खेला जा रहा है, उसमें भी भारत के जो हमारे खिलाड़ी पहुंचे हैं उन्होंने भी सटीक निशाना लगाया है और काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अब तक। UTT सीजन 7 के फाइनल्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 जो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हुआ है और आज से शुरू हुआ है उसके बारे में भी आपको कार्यक्रम के दौरान बताया जाएगा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और डूरन कप की रिपोर्ट भी कार्यक्रम में जरूर शामिल की जाएगी। और अब शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से।
6: द कॉमनवेल्थ गेम्स

0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जहां भारत का प्रदर्शन शानदार लगातार जारी है। चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तैराकी और अन्य स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहे हैं। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कल का पूरा चौथा दिन कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई ने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। इससे पहले वह 2018 और 2022 में भी गोल्ड जीत चुकी थी। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 105 किलो का सफल प्रयास कर स्वर्ण पदक पक्का किया और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्डन हैट्रिक पूरी करी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा पदक आया पुरुषों के 60 किलो के वर्ग में, जहां चानम्बम ऋषिकांत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। स्नैच में उन्होंने 116, 119 और 121 किलो वजन उठाया। उन्होंने 121 किलो का स्नैच कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी भी करी। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 143 किलो सफलतापूर्वक उठाया। कुल 264 किलो वजन के साथ उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। इसके बाद पुरुषों के 65 किलो वर्ग में राजा मुथु पांडी ने भी रजत पदक जीतकर भारत को एक और सफलता दिलाई। स्नैच में 126, क्लीन एंड जर्क में 160 और कुल 286 किलो का वजन उठाकर उन्होंने स्कोर बनाया। गंभीर चोटों के बाद उनका शानदार वापसी का प्रदर्शन रहा। अब मुक्केबाजी की तरफ चलते हैं, जहां मुक्केबाजी में भारत के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिया है। पुरुषों के 55 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 के एक तरफा फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार ने मलावी की डेबोरा को पूरी तरह हावी करते हुए रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट यानी RSC के जरिए हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। हालांकि पुरुषों के 65 किलो वर्ग में आदित्य प्रताप यादव बेहद करीबी मुकाबले में युगांडा के मुक्केबाज से 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हार गए और उनका अभियान समाप्त हो गया। अब इसी के साथ चलते हैं तैराकी की तरफ। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। अनीश सुनील कुमार गौड़ा, धाक्षण शशि कुमार, आर्यन नेहरा और श्रीहरि नटराज की टीम ने फाइनल में 7:29.84 का समय निकालते हुए छठा स्थान हासिल किया। लॉन बॉल्स की तरफ चलें तो महिला पेयर्स स्पर्धा में रूपा रानी तिकरी और पिंकी सिंह को पहले नामीबिया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ उनकी पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। पुरुष एकल में पुतुल सोनोवाल भी अपने मुकाबले में हार कर आगे नहीं बढ़ सके। अगर बात करें व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, महिलाओं की 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्पर्धा में भारत को स्कॉटलैंड के खिलाफ 21-4 से हार का सामना करना पड़ा। जिमनास्टिक्स की तरफ बढ़े तो पुरुष ऑल राउंड फाइनल में तपन मोहंती ने शानदार प्रयास किया और कुल मिलाकर 15वां स्थान हासिल किया। अब चौथे दिन के बाद भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से उभर कर आई कि दिन के अंत में भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक, यानी कि कुल 4 पदक दर्ज हुए। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं आज के 5वें दिन के विभिन्न स्पर्धाओं में भारत के शानदार प्रदर्शन की। एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी चुनौती पेश की, जबकि कई खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह भी बनाई। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ की। भारत के गुरिंदर वीर सिंह ने अपनी हीट में 10.39 का समय निकालते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस बार प्रतियोगिता का प्रारूप थोड़ा अलग है। किसी भी हीट में पहले स्थान पर आने से सीधा सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिलेगा। सभी 11 हीट पूरी होने के बाद सबसे तेज 17 धावक सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। पहली 5 हीट के बाद गुरिंदर वीर का समय टॉप 10 में बना हुआ था और आखिर 11 हीट के बाद उनका स्थान बना 28। इसके बाद पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत के तेजस शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.76 के समय के साथ फाइनल में जगह बना ली। अब उनका फाइनल मुकाबला आज रात 2:15 पर खेला जाएगा, जहां भारत को उनसे पदक की उम्मीद जरूर रहेगी। लॉन्ग जंप में भी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर रही। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर ने अपने पहले ही प्रयास में 8.01 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी स्पर्धा में भारत के लोकेश सत्यनाथन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब लॉन्ग जंप के फाइनल में भारत के दो खिलाड़ी पदक की दौड़ में नजर आएंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं तैराकी की तरफ, जहां तैराकी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश ने अपनी हीट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका फाइनल मुकाबला आज रात 1:44 पर होगा। इसके अलावा 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा भी भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे। ये स्पर्धा सीधे फास्टेस्ट हीट फाइनल के रूप में आयोजित होगी और इसका मुकाबला आज रात 1:07 पर खेला जाएगा। चलते हैं अब पैरा तैराकी की तरफ, जहां बहुत अच्छी खबर ये है कि पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक्स SB9 स्पर्धा में स्वातिक पटेल ने अपनी हीट पार करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका पदक मुकाबला आज रात 12:02 पर होगा, जहां उनसे भारत को पदक की उम्मीदें रहेंगी। मुक्केबाजी की तरफ चले तो पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के सचिन ने आज अपनी चुनौती पेश करी और सचिन उसमें कामयाब रहे। उन्होंने 4-1 से अपना बाउट जीत लिया है। और इसी समय अगर बात करें चलते हुए मैच की, तो महिलाओं में 53 किलोग्राम भार वर्ग की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव पर भी हम सबकी नजर है, जहां उनका मैच अभी चल रहा है। इसके अलावा आज देर शाम और रात में भी भारत के कई खिलाड़ी पदक मुकाबलों में उतरेंगे, जिनमें बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, लॉन बॉल्स और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं भी शामिल हैं। भारत की कोशिश होगी कि 5वें दिन पदकों की संख्या में और उन्नति करी जाए।
1: और अब चलते हैं ISSF विश्व कप 2026 की ओर, जहां चीन के हांगझाऊ में भारतीय निशानेबाजों ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया है। सबसे पहले बात महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा की करें तो भारत की युवा स्टार ईशा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे फाइनल में ईशा का धैर्य और सटीकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। भारत की एक और स्टार निशानेबाज और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को इस स्पर्धा में डबल पोडियम दिलाया। ईशा और मनु की सफलता ने दुनिया को भारतीय महिला पिस्टल शूटिंग की गहराई और मजबूती का एहसास कराया। इससे पहले प्रतियोगिता के शुरुआती दिन भारत के लिए सैन्यम ने शानदार शुरुआत की थी और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने 243.4 अंकों के साथ रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला और उन्होंने क्वालिफिकेशन और फाइनल दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा

0: प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आने वाले दिनों में भारतीय टीम की निगाहें 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल, थ्री पोजीशन रैपिड फायर पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं पर रहेगी और यह प्रतियोगिता भारत के लिए 2026 एशियाई खेलों की तैयारियों का भी महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। इन तीन पदकों ने साबित कर दिया कि भारतीय निशानेबाज विश्व शूटिंग में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं।
1: श्रोताओं, खेल समाचार को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्रिकेट की तरफ, जहां भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। मैच और पूरी सीरीज के हीरो रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। भारत की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही थी इस मैच में। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीसरे मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और केवल 2 रन बनाकर ही लौट गए। इसके बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की एक अहम साझेदारी कर टीम को संभाला। धीमी पिच पर जहां रन बनाना आसान नहीं था, वहीं वैभव ने शानदार साझेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 49 गेंदों में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों पर 27 रन और रिंकू सिंह ने 14 गेंदों पर 25 रन की तेज पारियां खेलकर भारत का स्कोर 192 रन तक पहुंचाया। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते हुए ब्रायन बेनेट को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके बाद यश ठाकुर ने 5वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर डियोन मायरिस 19 और कप्तान सिकंदर रजा को गोल्डन डक पर आउट कर जिम्बाब्वे की मुश्किलें और बढ़ा दी। एक समय टीम का स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो गया था। हालांकि रायन बर्ल और वेस्ली ने 4थे विकेट के लिए 60 रन जोड़कर संघर्ष जरूर किया। उसके बाद मधेवरे ने 28 रन बनाए, जबकि रायन बर्ल 43 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाकर अंत तक टिके रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए जिम्बाब्वे को वापसी का मौका ही नहीं दिया। मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि भारतीय टीम ने फील्डिंग में 5 कैच भी छोड़े, लेकिन इसका मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा। इस जीत के साथ भारत ने जिम्बाब्वे दौर का शानदार अंत करते हुए 3 T20 मुकाबले जीत कर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी शानदार बल्लेबाजी से भविष्य के लिए एक बार फिर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए इस पे सुनते हैं VVS लक्ष्मण ने क्या कहा।
2: फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद द प्लेयर्स, यू नो, एंड इन दिस रोल इट्स बीन क्वाइट अ फुलफिलिंग रोल वेयर इट्स नॉट ओनली विद द सीनियर इंडियन क्रिकेटर्स मेन एंड वुमेन बट ऑल्सो बींग पार्ट ऑफ द एंटायर पाथवे प्रोग्राम एंड क्रेडिट टू BCCI that they invest a lot of time, effort and money for the development programs, you know, and I think me taking care of that has been a very satisfying role so far. If you see someone like Vaibhav, he just played Under-19 World Cup and in a matter of 4 to 5 months, you know, he dominated the IPL, and we know how tough IPL competition can be, you know, and taking on the best of bowlers from not only India but around the world, the way he evolved, the way he progressed as an international cricketer, and he showed what kind of potential and class and talent he has, you know. So I think we are very fortunate that we have got a lot of depth in our ecosystem, and I think I feel for the next 5 to 10 years we've got a lot of quality players who will take Indian cricket forward.
0: और अब UTT सीजन 7 के फाइनल की बात करते हैं। यू मुंबा टीटी ने शानदार वापसी करते हुए डेम्पो गोवा चैलेंजर्स के पूरे सीजन के अजेय अभियान का अंत कर दिया। रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक ग्रैंड फिनाले में 8-5 की जीत के साथ अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर

लिया। शुरुआती दो मुकाबलों में यू मुम्बा 2-4 से पीछे था, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन ने दमदार वापसी की। कप्तान मानुष शाह और ऐना हर्षी ने मिश्रित युगल में शानदार जीत दर्ज कर टीम की वापसी की नींव रखी।

0: आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और आपको अगला ऋण आसानी से मिल जाएगा।
1: बिल्कुल। और ये तो थी हमारी मुद्रा लोन की बात, और हमारे भाइयों को पता चली गई होगी कि वो किस तरह से अपना रोजगार शुरू करें। और एक और देशभक्ति लोकगीत अपने भाइयों को सुनवाते हैं बुल्लन त्यागी की आवाज में,
0: जी

0: साथियों, भारत की जितनी भी स्तुति की जाए उतनी ही कम है। और अब आपको बता दें कि हमारे जो युवा हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएं होती हैं अगर उन्हें एक दिशा मिल जाए ना। वंदना बहन, वो फिर पता ना क्या से क्या कर दें, चाले पाड़ दें, यूँ कह रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: नहीं तो इसका एक तरीका है कि हम किसी ना किसी प्रकार की व्यावसायिक ट्रेनिंग जरूर लें, है ना, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। और वो ट्रेनिंग आपकी पसंद की भी हो सकती है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है आप उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग ले लें। अगर कई जो हमारे युवा होते हैं उन्हें शौक होता है कि भाई वो मतलब बकरी पालन करें या कोई गाय पालन करें, या आप कृषि यंत्र बनाना शुरू करें, या फिर पशुओं की जो उपचार करने की विधि होती है उनके बारे में जानकारी लेके
1: सारी बहुत सारी चीजें होती है गांव में, चाहे हमारे महिलाओं चाहे पुरुषों, उनके लिए बहुत काम है वो करते हैं। इतना काम करते हैं वो लोग कि उनको पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता पहली बात तो, लेकिन उसके बाद भी वो समय निकाल सकते हैं अपना रोजगार शुरू करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया इन चीजों को। और हमारी महिलाएं वो भी इनसे जुड़ सकती हैं, और जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं वो अपने घर में वैसे भी रोजगार करती हैं, जैसे घर में जवे बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेती हैं, अचार बना लेती हैं, फिर उसको बाद में गांव में भी गांव में ही बेचती हैं और अपना थोड़ा सा छोटा सा रोजगार शुरू कर लेती हैं। तो ये तो हमारे गांव के व्यक्तियों के पास एक हुनर होता है, या कह दीजिए भगवान का गॉड गिफ्ट होता है।
0: जी, एक ऐसी ही योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी बड़ी अच्छी योजना है। इसके तहत भी आपको मतलब ट्रेनिंग भी मिलती है, आप अपना समूह भी बना सकते हैं और जो ट्रेनिंग ली है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी है जिसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है।
1: और इस ट्रेनिंग में उनका कोई खर्चा भी नहीं होता है, और आप कहते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की ये ट्रेनिंग होती है, और आराम से आप सीख सकते हैं, छुट्टियों में सीख सकते हैं, खाली समय में सीख सकते हैं। एक दो घंटा आपको जाना होता है तो आपको छोटा छोटा रोजगार, अगर आप प्रशिक्षण ले ले तो वो आपके हाथों में हुनर हो जाता है।
0: एक बात और जोड़ दूं ना बहन, के जैसे हम ऋण की बात कर रहे थे यार, आप प्रशिक्षित होते हैं, आपके पास कोई छोटा मोटा

0: प्रमाण पत्र होता है तो आपको ऋण मिलने में और आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज है उसे तैयार करें। हम भी तैयार हैं अब एक और प्रस्तुति लेके।
1: जी हाँ, हम अगला देशभक्ति लोकगीत सुनवाएंगे अपने भाइयों को रविंद्र कुमार भदौला की आवाज में।
2: अरे संस्कृति से हुआ महान,

0: और रविंद्र कुमार बद्दोला की आवाज़ में अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 7 बजने को लीजिए आप सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर

0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांडर पालिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। वीरेंद्र भाई देखिए, हम फिर से उपस्थित हैं और अपना कार्यक्रम अपने साथियों के साथ सुनवाने, उनको अच्छे से मनोरंजन करवाने और उनसे जानकारी जो हमें दिलवाना चाहते हैं वो सब कुछ उनको देने फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो हम अपने भाइयों को जानकारी भी देंगे और कुछ बातें भी करेंगे, मनोरंजन तो होगा ही साथ साथ। तो जो हम जानकारी देंगे वो अपने भाइयों को देंगे कि मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावना है, इसके बारे में
1: जी।
0: तो जो हमारे किसान भाई ये सुनना चाहते हैं तो ध्यान से जरा रेडियो तेज कर लीजिए अपना।
1: जी, मैदानों में सेब की बात होने वाली है भाई। फलों का राजा तो आम है और उसका चचेरा भाई जो है वो मंत्री से कम नहीं है, उसे सेब कहते हैं
0: जी।
1: तो जरूर जानिएगा इसके बारे में।
0: लेकिन इससे पहले एक बातचीत करते हैं AI आधारित स्मार्ट खेती के बारे में।
1: जी वंदना बहन, आजकल का जो समय है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और कृषि में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। अब वंदना बहन ये देखो कि अब बारिश हो रही है और हम खेत में नहीं जा सकते, जाने में हमें कठिनाई है, हमारी ट्यूबवेल चल रही थी, अब हम उसे घर बैठे बंद करना चाहें, उसे मतलब बिजली बचाना चाहें और व्यवस्थित करना चाहें अपने खेत को, तो AI की संभावनाएं, हम घर बैठे ही अपनी ट्यूबवेल को भी बंद कर सकते हैं। नहीं
0: बिल्कुल। और देखिए कहते हैं ना कि भाई राष्ट्रीय कीट नियंत्रण प्रणाली भी इसमें है कि भारत सरकार ने AI के माध्यम से जो मशीन लॉन्च की है उसमें किसानों को सिर्फ कीट की फोटो खींचकर ऐप पे डालते हैं और पता लग जाता है कि इस पर कौन सी दवा का छिड़काव करें। ये सब चीजें हम AI के माध्यम से बड़ी सटीकता से जान सकते हैं
1: जी।
0: मौसम का पता लगा सकते हैं कि कब मौसम खराब होने वाला है, हमें अपने खेतों में पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी की जांच कर सकते हैं कि भाई हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें कौन सा पोषक तत्व उसमें डालना है, सारी बातें AI के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं
1: जी। वंदना बहन, अभी आपने बताया ना कि मतलब कीटों का पता लगा सकते हैं पत्तों पे फोटो खींच के, उनसे ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, किस चीज़ का पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये किस परिस्थिति में होता है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, अब कितनी बातें बताई जाएं
0: जी। तो ये तो थी हमारे भाइयों के लिए AI स्मार्ट खेती की बातें कि अगर वो करते हैं तो उनका काम कितना आसान हो जाता है, उनकी फसल की पैदावार बढ़ती है कम लागत में, अच्छे संसाधनों के साथ उनकी बचत भी होती है और खेती में जो नए बदलाव आते हैं उसका भी एक नया ही मोड़ उनको देखने को मिलता है
1: जी। ये आपके ऊपर है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, कितने प्रयासरत हैं और अपने युवा साथियों के साथ मिलके आप बहुत सारी ऐसी AI आधारित कृषि जो प्रणालियां हैं उनको अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो थी जानकारी और अब अपने भाइयों से करवाते हैं बातचीत कि बातचीत का विषय है मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। मनोज सैनी से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकल, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: जब भी हमारे सामने हमारी भोजन की थाली आती है तो बड़े ही शौक से हम वो खाना खाते हैं क्योंकि वो हमें पोषण देता है। लेकिन जब कोई माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा एक फल खाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि फलों में जो चीजें होती हैं वो सब्जी में नहीं मिलती, सब्जी में जो चीज है वो फल में नहीं मिलती। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फल भी हमारे लिए उतने ही लाभप्रद हैं जितनी की बाकी चीजें हैं। और कई बार बच्चे कुछ फलों को बड़े ही शौक से खाते हैं और इसमें अगर मैं नाम लूं सेब का तो सेब सभी को भाता है, जो रोज सवेरे खाता है पढ़ने को दौड़ा आता है, रोगों से छुट्टी पाता है। ये छोटी सी कविता मुझे याद आ गई और आज ये मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सेब पर और हमने अपनी बातचीत का विषय रखा है मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। और जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो है मनोज सैनी। मनोज जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: लेकिन जो भी हमारे श्रोता सुनेंगे और मैं भी जब सुनकर बड़ी हैरान हो गई हूँ कि भाई मैदानी क्षेत्रों में सेब का उत्पादन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हमें संभावनाएं दी गई हैं तो संभावना तो है, तो बात

0: वहीं से आरंभ करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं मैदानिक क्षेत्र में।
1: जी, इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं और इस विषय में हम 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमने इसे सफल तरीके से उगाया है। फरीदाबाद, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जयपुर, इसमें हमने सब ट्रायल किया है। इवन बेंगलोर तक भी हमने ये सब सफल प्रशिक्षण किया है और 3 साल में अब अपने घर का, अगर आपने अपने किचन गार्डन में अगर सेब का पेड़ लगाया हुआ है तो आप गर्मियों में अपने घर का सेब खा सकते।
0: क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं मनोज जी कि कोई भी बात हम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम तो हमें आगे बढ़ाना ही होता है। तो कैसे आपके मन में ये आया कि मैदानिक क्षेत्रों में मैं सेब उगा कर देखूं, या आपने कहीं इसको उगते हुए देखा, या आपने कोई इसका ऐसा मेला देखा कि जहाँ पर ये वेराइटीज थी, इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: मेरे को ये कुछ बागवानी की शुरू से आदत भी थी और मैं कुछ पढ़ता भी रहता था इस बारे में, तो मुझे मालूम पड़ा कि गर्मियों में सेब हो सकता है। फिर मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च करना शुरू किया, लोगों से मिला जिन्होंने लगाया, उनसे बात की, किसानों से बातचीत की। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं ही इसे अच्छी तरह से करूं और कम से कम हर घर में अपने बाग का सेब हो सके। और इसकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इक्विवेलेंट ही होती है, बराबर होती है बाकी हिमाचल और कश्मीर जैसे सेबों की।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही हम सेब की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही सेब होता है, मैदानी क्षेत्रों में तो ये होगा ही नहीं। और आपने लीक से अलग हटकर ये काम किया है, तो इसमें जब हम सफलता की बात करें तो पहले मैं आपके मुख से जानना चाहूंगी कि आप कहाँ तक इस अपनी मुहिम में सफल हुए हैं।
1: जी, मैंने, औरों की बात तो बाद में आती है, मैंने खुद ही अपने घर में ये लगा रखे हैं और मेरे पास अब 4थे साल का पेड़ है और मैंने अभी फ्रूटिंग ली है इसी महीने। आपको ये भी बताने में हर्ष होगा, इस टाइम बाकी जो सेबों के जो रेट होते हैं वो करीब 200 से 300 रुपये होते हैं। अगर अपने घर का ही आप सेब खाएंगे और अपने गार्डन का सेब खाएंगे तो ये पूर्णतः सक्सेसफुल है। और इसके जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि भाई 3 और 4 साल में आप अपने घर का सेब खा सकते।
0: जी, मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही उत्सुकता हो रही है कि मैं कैसे जानूं कि हम अपने घर में भी सेब उगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी देखनी होगी जहां से हम इसकी पौध लेकर आएंगे।
1: जी, अभी ये बहुत कम जगह अवेलेबल है तो हम इसको पहुंचाने में भी किसानों की मदद करते हैं और हम नर्सरी ऑनलाइन करके एक हमारा होटल है उसके थ्रू हम कहीं पे भी हम पहुंचा देते हैं। और ये अधिकतर हम ये डोरमेंसी का जब पीरियड होता है इनका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो इसमें हम ये लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पौधा सुप्त अवस्था में होता है और वो हम कहीं भी भेज सकते हैं।
0: जी, जब हम बात करते हैं कि भाई हमें तो अब मन में ठान लिया कि हमें तो सेब लगाना है, लेकिन लगाएंगे कैसे, क्योंकि भूमि भी चाहिए, तो भूमि भी कैसी हो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आएंगे तभी तो हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बताइए कि जब हम भूमि का चयन करेंगे तो कैसी हमारी भूमि होनी चाहिए।
1: देखिए, अगर हमने अपने घर का पीएच लेवल टेस्ट करा रखा है तो 6.5 तक हम आराम से, और जैसे मिट्टी होती है जिसको भी थोड़ा गार्डनिंग का शौक होता है, बागवानी का शौक होता है और बाकी चीजें लगाए होते हैं फल फ्रूट, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल मिट्टी चाहिए। अगर हल्की दोमट मिट्टी होती है और जल निकासी का आपका अच्छा प्रबंध होता है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस सेब के पौधे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती।
0: यानी कम पानी में भी उगता है।
1: जी, कम पानी में, जैसे राजस्थान जैसी जगह में भी इसका उत्पादन किसान कर रहे हैं, हमने भी लगाए हैं। और जैसे आजकल मानसून का टाइम है तो इस टाइम भी जैसे अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं या किसानों ने लगा रखे हैं तो उसका जल भराव नहीं होना चाहिए,
0: जी
1: तो उसके लिए हमें एक ऐसी जगह चयन करनी चाहिए। जैसे हम अगर घर में लगाना चाहते हैं तो हम 3 फीट बाय 3 फीट का एक गड्ढा खोदेंगे, दूरी रखेंगे 8 से 10 फीट की और गड्ढे में गोबर की खाद डालेंगे 10 से 15 किलो और नीम की खली 500 ग्राम और जैविक उर्वरक 1 kg। वो डालने के बाद फिर हम वो पौधा सेब का लगाएंगे और जैसे हमने नवंबर में लगाया तो मार्च अप्रैल में उसकी पत्तियां आनी शुरू होंगी और उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा।
0: जी तो पौधा हम खुद ही लगा सकते हैं या किसी माली को बुलाकर और हमें गड्ढा खुदवा कर और तब लगाना होगा।
1: जी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष तकनीक नहीं चाहिए। तो आप खुद भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास माली है तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि माली ज्यादा देखभाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माली ही लगा सकते।
0: जब बात हम करें कि भाई हमें अपना पौधा तो अब लग गया है, लेकिन पानी तो

0: जरूरत है कि भी हमें हर पौधा पानी के बिना नहीं रह सकता, तो इसको भी पानी की जरूरत पड़ेगी। तो कितना पानी सेब के लिए चाहिए, मतलब जब हम पहली सिंचाई करें तो हमें कब करनी होगी?
1: जैसे हम नवंबर दिसंबर में ही लगाते हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो जैसे हमने आज पौधा लगाया तो कम से कम सिंचाई इतनी करनी है जिससे कि करीब 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और फिर जब वो थोड़ा सा सेटल हो जाए फिर 2 दिन बाद फिर आप दें। और हमारे को ये पता लग जाता है जब जैसे ही मिट्टी हमारी सूखी होती है उसी वक्त हम पानी दे सकते हैं
0: जी।
1: बस ध्यान यही रखना है कि पानी अधिक ना हो जिससे कि उनकी जड़ें खराब ना हो।
0: जी, हमारे जो श्रोता हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे कि उनकी जड़ें जो हैं वो गले नहीं। जब हम बात करते हैं कि पोषक तत्वों की, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसे पोषक तत्व दिए जाएंगे जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो?
1: हम इसमें गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं बताना चाहूंगा नीम की खली और जैविक उर्वरक भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम नेचुरल फार्मिंग ही करें, जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, और फंगीसाइड के लिए उनकी जड़ों को थोड़ा सा फंगीसाइड लगाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि उनको कोई रोग ना लगे।
0: जी, अगर इसकी हम छटाई की बात करें तो छटाई इसकी कैसे की जाएगी?
1: छटाई जैसे कि हमने नवंबर में लगाया और इसके बाद जो नेक्स्ट नवंबर आएगा तो उस टाइम क्या होता है कि ये पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तो हमें जो प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है कटिंग का। हम अच्छे से उसको सेटल करते हैं, कैनोपी बनाते हैं जिससे कि पूर्णता जो धूप है हवा है वो अच्छे से मिल सके।
0: जी, किचन गार्डनिंग और जो व्यावसायिक खेती है उन दोनों की अगर हम बात करें, क्योंकि श्रोता जो है वो हमारे हर प्रकार के श्रोता होते हैं जो व्यावसायिक खेती भी करते हैं और जो किचन गार्डनिंग में भी भरोसा करते हैं और उनको शौक भी होता है, तो उन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे मैं कहना चाहूंगा, अगर जैसे किसान फार्मिंग करना चाहते हैं, इसके ऊपर 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको कहूंगा कि भाई वो ट्रायल पे 15-20 पौधे लगाएं और उसका रिजल्ट देख के फिर अगले साल 1 एकड़ में 400 प्लांट लगाएं, जिससे एक व्यवसायिक वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि किसान धान गेहूं और इस तरह की फसलों में ही है, तो उनके साथ साथ भी ये कर सकता है जिससे कि एक उनको अधिक आय मिल सके, और ये आराम से किसान लोग कर सकते हैं।
0: जी, तो क्या आप अपने पौधों को लेकर या इसकी पब्लिसिटी के लिए किसी मेले में भी गए हैं?
1: जी, हम समय समय पर मेलों में जाते हैं, पूसा मेला ग्राउंड में दिल्ली में 2-3 सालों से हम वहां पर अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं और किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पौधे हमारे देश से बाहर भी गए हैं और वो अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सेब को जो है आगे आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप में भी कर सकते हैं। जब हमने इस पर लागत लगाई दी है तो हर कोई किसान या कोई भी होगा वो यही सोचता है कि इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, कितना हम लाभ लेंगे। मान लीजिए मेरी लागत लग गई है इसमें 10,000 रुपये, तो मुझे इसका लाभ कितना मिलेगा? इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए हम अपने 1,000 गज में ही ये पौधे लगाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको ये व्यवसायिक करना है या किचन गार्डन के लिए करना है, तो जैसे हम 20 या 30 पौधे भी आराम से लगा सकते हैं। और व्यवसायिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यवसायिक अगर आप 3 साल में 8 या 10 टन उत्पादन चाहते हैं तो आपको कम से कम 400 पौधे लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपका जो खर्चा आएगा वो करीब होगा, पौधों का खर्चा होगा प्लस उर्वरक का खर्चा होगा, और आप कम से कम 4,80,000 से 8,00,000 प्रति एकड़ तक आप आय हो सकती है।
0: और कौन कौन से राज्यों में अब तक जो है आप सेब की जो ये किस्में हैं वो सप्लाई कर चुके हैं, या कौन कौन से राज्यों में जो सेब है उसका उत्पादन जो है जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रहा है?
1: जी, सबसे पहले हमने कर्नाटक में लगाए थे, हमारे 1 एकड़ में करीब 300 प्लांट थे और उनका उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा है। लखनऊ में, मलियाबाद में हमारे कुछ पौधे लगे हैं, उनका फ्रूट आ चुका है। फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल में हमारे करीब 25 से 30 पौधे हैं, उनमें अभी फ्लावरिंग आ गई है, अगले साल उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी।
0: जी।
1: फरीदाबाद में, जयपुर में, चंडीगढ़ में हमें खुशी होती है कि हमने ऐसी अच्छे जगह लगाए हैं और इसका हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है।
0: जी।
1: और हम चाहते हैं कि किसान इसको समझें और एक आय का साधन ले, एक रोजगार का साधन उनको मिलेगा और उनको एक न्यूट्रिशन वैल्यू, और उनके अपने शरीर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो गर्मी में करीब 200 से 300 रुपए किलो जो सेब होता है वो अपने घर में खा सकते हैं।
0: अभी मनोज जी आपने बात की है रोजगार की।

0: ये ऑनलाइन बहुत है आजकल, आप देखते हैं हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है।
1: जी
0: तो नवंबर दिसंबर में तो एक पतली सी डंडी की तरह होता है और ये कोरियर के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में 2 दिन में या 3 दिन में आ जाता है। बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता, बाय एयर भी हम इसको बेच सकते हैं।
1: जी तो संक्षिप्त में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे सेब के बारे में?
0: मैं तो ये कहना चाहूंगा, घर घर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि एक परिवार की भी आवश्यकता है। और आपने तो सुना है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे।
1: जी
0: तो ये मल्टीपल काम होगा इससे, और सेहत भी बनेगी और अपने घर का सेब भी आप
1: ये
0: खाएंगे।
1: तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो हमें उपाय करने हैं या जो हमें चीज़ें खानी है, फल खाने हैं, सब्जियां खाने हैं, वो तो हमें ज़रूर खाने हैं, और हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ज़रूर खिलाने हैं, क्योंकि वही तो नींव है हमारे देश के। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वंदना बहन, इस कार्यक्रम को सुन के, बातचीत को सुन के हमें पता चला कि जो सेब है अब वो पहाड़ों की बपौती नहीं रह गए हैं, अब सेब मैदान में आ चुका है।
1: बिल्कुल, हमारे भाई अभी सुन रहे थे यही एक जानकारी, मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। मनोज सैनी से बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल, और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन।
2: जी
1: लेकिन उससे पहले हम अपने भाइयों को मौसम के बारे में जो पूर्वानुमान है
2: जी
1: उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं।
2: जी
1: कहते हैं ना कि किसान भाइयों को अगर पहले से कुछ चीज़ का पता होता है तो वो सचेत हो जाते हैं, और सचेत होने से उनकी बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता है।
2: जी
1: जैसे कि किसान भाइयों को बताया जाता है कि भाई हमारी सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं जो
2: जी जी
1: पड़ी रहती
2: जी
1: हैं हमारी खेतों में, सब्जी है, नर्सरी है, दलहनी फसलें हैं, उनका जो जल प्रबंधन है, अगर जल भर जाता है तो उसकी निकासी आप बराबर मात्रा में करते रहें।
2: जी, बारिश के पानी में डूबने से जो बेल वाली जो कृषि होती है उसको नुकसान होता है, ये तो
1: जी
2: हम सभी जानते हैं, तो उसका उपाय भी करना ज़रूरी है। और वंदना बहन, यह समय जो है वो खास तौर से मिर्च, बैंगन, फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है।
1: बिल्कुल, और कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी वर्षाकालीन फसल में बुआई कर लेनी चाहिए, कि भाई हमारी जो बरसाती फसलें हैं उनकी उस समय बुआई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
2: जी, और चारे के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। हम अपने दुधारू पशुओं के लिए, जानवरों के लिए जो चारा उगाते हैं उसमें ज्वार बहुत अच्छा है, और ज्वार तो वैसे भी मोटा अनाज है, ये इंसानी भोजन के लिए भी बहुत अच्छा है, मिलेट की श्रेणी में आता है, तो आप ज्वार की बुआई इस समय कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई भी देखिए, कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं तो बरसात के मौसम में खरपतवारों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है,
2: जी
1: तो उनकी सफाई भी आप साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जो हमारी ज़मीन के पोषक तत्व हैं वो आधे से ज़्यादा वही प्रयोग कर लेते हैं, और हमारी
2: जी
1: फसल को वो फायदा नहीं पहुंचता, उनके
2: पोषक
1: स्वास्थ्य
2: तत्व।
1: पर असर पड़ता है।
2: जी, तो अब मनोरंजन की बात कर रही थी वंदना बहन, तो करवा दें।
1: जी बिल्कुल, सुरेश चंद्र गोला से सुनवाते हैं ये उपदेश।

0: और साथियों, इसी उपदेश के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ बेशकीमती से गजलें। गजलों और कव्वाली पर आधारित ये कार्यक्रम आप हर रोज सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कुछ खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाएं। तो आज कार्यक्रम की पहली गजल मिताली और भूपेंद्र की आवाज़ में।

0: जगजीत सिंह की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजलों का संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और

0: हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माली बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के कारण उसे रद्द करने और दोबारा नीट परीक्षा कराने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह की एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह देखेगी कि सरकार की ओर से नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड टास्क फोर्स नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने के बारे में क्या सुझाव देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कुछ अलग तरह के सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास सुशासन सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा जैसे पहलों से सरकार लगातार काम कर रही है।
3: जिस तरीके से पेपर लीक केस में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई और केवल बनाई नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में ये सख्त कानून लेके आया जा रहा है। 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो इसलिए ये एग्जाम अब CBT के माध्यम से करवाया जाए।
1: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। दक्षिण जिला नवाचार परिषद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली सरकार ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां छात्र स्कूल स्तर से ही नवाचार और रिस्क लेने की भावना विकसित कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। एक रिपोर्ट।
4: पिछले वर्ष 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को मुख्य याचिका के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुचित नहीं है क्योंकि ये FIR पर आधारित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा

0: और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पदभार ग्रहण करने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि उनकी कार्य योजना स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के 5 प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा तथा जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि निगम की विकास परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा करने, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, जलभराव की रोकथाम, मॉनसून संबंधी रोगों से बचाव, टोल प्लाजा पर यातायात जाम, पीएम उदय योजना और सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिक पुनर्स्थापन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 देसी पेड़ और 81,700 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलास और खिजड़ी जैसे प्रजातियां शामिल है। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए 70,00,000 पौधारोपण मिशन का हिस्सा है। इसमें डीडीए को 23,00,000 देसी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष अब तक दिल्ली में 8,29,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी ताप प्रभाव कम करना और दिल्ली के प्राकृतिक वन तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने चौखंडी और ख्याला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत जितनी जरूरी है उनका समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना उतना ही आवश्यक है। पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से बृहस्पतिवार 2 बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इस दौरान राजौरी गार्डन, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, ख्याला, राजा गार्डन सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगाने के लिए 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आज से एक सप्ताह तक चलने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
3: मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार खेल अवसंरचनाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए। लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें।
3: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल भावना को सशक्त बनाने का अहम अवसर भी है।
5: It gives me an immense pleasure.
6: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। खेल दोस्ती और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना से जुड़े 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है।
3: 2 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीराबाई चानू को स्कॉटलैंड में हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतना उनकी असाधारण मेहनत दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मीराबाई चानू की शानदार खेल यात्रा का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथु पंडी को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मिसाइल तकनीक नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से डॉ कलाम ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्या शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
8: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
8: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
9: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
8: आप कौन?
10: आरबीआई कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लेकर कार्यक्रम गीत मालिका हाजिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त सविता। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। और अभिवादन के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो आज का मौसम है वो वाकई काफ़ी खुशनुमा है। और ये मौसम हमारे मिजाज को किस तरह से बदल देता है, हम कितने नई नई ऊर्जा से ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं, ये तो सिर्फ मौसम का ही असर होता है। और जैसा कि आज का मौसम है भाई, अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ के मौसम की बात की जाए तो वाकई ये मौसम ऐसा है जैसा ये गीत है।

जी हाँ, रिमझिम फुहारें और सावन की बात पे। बारिश का जब मौसम होता है तो वो हर दिल को बड़ा ही प्यारा लगता है। आज यादों की बात करते हैं, गीतों की बात करते हैं, उन खूबसूरत एहसासों की बात करते हैं जो हर बूंद अपने साथ लेकर आती है। जब भी बूंदें बरसती हैं तो हर किसी को कुछ न कुछ याद जरूर आता है। बरसती बूंदें कह रही हैं एक प्यारी सी बात, हर मौसम की अपनी खुशबू, हर बारिश की अपनी सौगात।

वाकई बरसात का मौसम सिर्फ बरसात का मौसम नहीं है, ये कई जज्बातों का मौसम है, ये कई एहसासों का मौसम है। बारिश की हर बूंद कुछ न कुछ पैगाम सुनाती है, किसी के मन को उद्वेलित करती है, किसी को नई यादों में खो जाने के लिए विवश कर देती है। किसी के साथ कुछ भावनाएं याद आ जाती हैं तो किसी के साथ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। बारिश केवल मौसम नहीं कह सकते, बारिश भावनाओं का उत्सव है। किसानों के लिए उम्मीद तो बच्चों के लिए खेल, प्रेमियों के लिए मुलाकात तो कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो जो सौंधे सौंधे से महक आती है उसमें लगता है कि जाने कौन ऐसा है जो दिल के इतने करीब है, और इतने खूबसूरती से उसने सावन की उस पहली बूंद से धरती को सींचा है कि मन में सभी भाव एकदम से उमड़ पड़े हैं।

जी हाँ, एक बरस में मौसम चार होते हैं और इन सभी मौसमों का अपना अलग ही मज़ा होता है। और लेकिन जब बरसात की बात आती है तो भाई रिमझिम बरसे पाने, धरते ओढ़ी नई कहानी, हरियाली की चूनर ओढ़े, मुस्कुराए फिर हर एक डाली। जी हाँ, मुस्कुराहट आ जाती है न सिर्फ चेहरों पर बल्कि उन फूल पत्तों पर भी जहाँ पर बरसात की बूंदें गिरती हैं। ये बरसात की बूंदें हमें ये भी सिखाती हैं कि जिंदगी का नाम चलते चले जाना है। हर बूंद अपनी एक कहानी कहती है। कुछ याद आपको आता है, कुछ याद हमें आता है, कुछ ऐसी भूली बिसरी बातें जो पानी के साथ जुड़ी हों, जो बरसात के जुड़ी हों। लेकिन इस बरसात के साथ में जो सबसे ख़ास बात रहती है वो ये रहती है कि इस बरसात में अपने दोस्तों का साथ बहुत भाता है। और जब दोस्तों का साथ हो जाता है तो मन करता है बादलों को एक बार फिर से यही कहने का कि तुम एक बार फिर से बरस जाओ।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। और बारिश की जब बात आती है तो बारिश जो है वो हर किसी के लिए अच्छी होती है, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो, हमारा मन हो, हमारे रिश्ते हो या कुछ भी हो। बारिश जब आती है तो सूखे हुए जल स्रोत भर जाते हैं, खेतों को नया जीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है, और तापमान की अगर बात की जाए तो वो भी संतुलित हो जाता है। और ऐसे ही रिश्ते भी संतुलित हो जाते हैं जब बरसात आ जाती है। ये बरसात कई गिले शिकवों को मिटा देती है, और जब बरसात आती है तो मन एकदम से खुश हो जाता है, और बहुत सारी बातें तो याद आती ही हैं, बहुत सारे साथ को हम मिस भी बहुत करते हैं।

जी साथियों, बारिश जो है हमें सिखाती है कि बादल चाहे जितने भी हों, इसके बाद आसमान जरूर साफ होता है। इसी तरह से जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, उसके बाद वो समय भी जरूर आता है जब सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, यानी कि खुशियों की बरसात भी जीवन में जरूर होती है। बारिश की हर बूंद यही पैगाम सुनाती है, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। और इसी उम्मीद के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और जीवन का ये फलसफा हमें हर जगह आजमाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है रुकना नहीं, झुकना नहीं। जो भी चाहते हैं उसे पूरा करें, अपने दिल में हमेशा एक उम्मीद रखें कि जो आज नहीं हुआ वो हम कल जरूर करके दिखाएंगे। बस अपनी लगन से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सावन की बूंदें भी कुछ ऐसी ही बातें हमें सिखाती है कि जिंदगी चलने का नाम है, और जो बादल से गरजते बरसते बूंदे धरती तक आती हैं, वो भी अपनी एक यात्रा को पूर्ण करती हैं, यानी कि उनकी वो यात्रा जब आसमान से गिरती हुई बूंदे जब बारिश की धरती पर पड़ती है, तो वो उसका सफ़र है, वो उसे तय करता है। और ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी तय करना होगा। फिलहाल तो हम अपने इस कार्यक्रम का सफ़र तय करने का वक्त आ चला है, क्योंकि अब वक्त जो है आपसे आगे बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आपको एक खूबसूरत से गीत के साथ यहीं छोड़े जा रही हूँ। फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस बरसात में खूब आनंद लीजिएगा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल

0: खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरूआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत

0: से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रूपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रूपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन

आज ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अपनापन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वामी फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है खयाम ने और गीतकार हैं साहिर।

अभी आप सुन रहे थे बप्पी लाहिरी का संगीत दिया हुआ फिल्म टूटे टूटते खिलौने का ये गीत, आवाजें थी येशु दास की। आइए सुनते हैं अगला गीत। संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, फिल्म का नाम है कस्मे वादे, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म हम किसी से कम नहीं से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अदालत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इसे सुनते हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी खूबसूरत गीत के साथ फिलहाल गीत सुनहरे कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए AIL Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को हैं। अभी थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रूपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रूपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक

0: KG. And President Draupadi Murmu has congratulated Gyaneshwari Yadav on securing the silver medal in the women's 53 kg weightlifting event and Bindya Rani Devi Sarukhaibam on winning a bronze medal in the women's 58 kg weightlifting event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता, लेकर आई हूँ नॉनस्टॉप म्यूजिक। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीतों के गुलदस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, वक्त हो चला है 3:10 और 10 सेकेंड और ये समय है हमारे कार्यक्रम

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए टीके जयराम अय्यर द्वारा बजाए वायलन पर ये प्रस्तुति।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आपने टीके जयराम अय्यर द्वारा बजाए वायलन पर ये प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मासन के बारे में। 5:20 पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुधा माथुर द्वारा गाया राग यामिनी बिलावल। सुबह 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, जबकि 6:05 का वक्त होगा अंग्रेजी में समाचार का। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार

0: ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओम फुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने जेएसी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडो गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, वन विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए 2रा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में 2रा स्थान हासिल करके एक और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के 3रे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. In the Lok Sabha, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date of information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Prime Minister Narendra Modi yesterday interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government has informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team, SIT, headed by Inspector General of Police, IG for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the temple trust finances. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh yesterday extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Alexander Polishuk, following the attack on commercial vessel MV Amorphi in which an Indian national was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks in commercial shipping and highlighted their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, one person died and several were injured in violent clashes on polling day yesterday during the first phase of Legislative Assembly elections. People's Party, PPP, reported that its worker Mukhtar Yunus was killed and 2 others injured by alleged firing from Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN supporters. PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari expressed grief over Yunus's death. The elections, originally planned for a single day, are now being held in 3 phases from today to the 10th of next month. The PPP and PMLN accused each other of electoral rigging in several constituencies. Polling was briefly disrupted at some stations due to clashes between rival party supporters. And Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in the women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow yesterday. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी सुनेंगे आप बद्ध पद्मासन के बारे में।
3: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता

अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से